0: देख लेना फिर तुझे फीडबैक में कैसे माइक कर फिर जो है हमें सबके लिए माइक कर रहे हैं एक
1: चाहता
0: ही
1: छह सत
0: नौ बाइक है राइट
1: जी
0: राइट चेनल भी नाल हो रहे थोन देखना पड़ा
1: ये कितने हो जी
0: बस
1: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਇੰਨੇ ਰਹਿਣਗੇ ਥੱਲੇ ਨੀ ਹੋਣਗੇ ਪੈਸੇ ਬੋਲ ਆਏ ਥੱਲੇ ਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਬੰਦ ਕਰ ਕਿੱਥੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਾਲਾ ਬੋਲੋ
2: ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਾਉਗੀ

अंत लय छाया सलोक महला पहला। दुख दारू सुख रोग भया जा सुख ताम ना होई, तू करता करना मैं नाही जा हों करी ना होई। बलहारी कुदरत वसया तेरा अंत न जाई लखिया रहाओ। जात मह ज्योत ज्योत मह जाता अकल कला भरपूर रहया। तू सच्चा साहेब सिफत सवाले।

रे गावन तुदनो पवन पाणी बैसंतर गावे राजा धर्म दुआरे गावन तुदनो चित गुपत लिख जानन लिख लिख धर्म बिचारे

आओ। सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गुर हाई, कहन ना जाई तेरी तिल वड्याई।

मिलै तृपतासह मिल संगत गुण परगास जिन हर हर हर रस नाम ना पाया ते पागहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन धुर मस्तक लिखिया लिखास धन धन।

रहाऊ। जनन पिता लोक सुत बनता, कोई न किस की तरिया। सिर सिर रिजक संबाहे ठाकुर, काहे मन पाओ करिया। उडे उड आवे सै कुसा, तिस पाछे बचरे शरिया। तिन कवण खलावे कवण चुगावे, मन मह सिमरन करिया। सब निदान दस अष्ट।

तेरे क्या गुण आख वखाणा। जो सेवा है जो सेवा है तुद जी, जन नानक तिन कुरबाणा। हर त्याव है हर त्याव है तुद जी, से जन जुग मैं सुख वासी। से मुकत भय जिन हर त्याया जी, तिन तूटी जम की फासी। जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जी।

पढ़ है बहु सिमरत शाश्वत जी, कर किरिया खट कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी, जो पावे मेरे हाँ।

सोई थीसी, जो तू देह सोई हो पाई रहाओ। सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनु कृपा करह तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुद आप विशो

सुखी बस मोरो परिवारा, सेवक सिख सब करतारा, मोर अच्छा निज कर दय करिए, सब बैरन को आज संगरिए, पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा।

तुमहो पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बप तरा काल पाए शिव जू अवतरा।

काश भेद न जानत, महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न।

अव कही पूपा अंडज जेरज से तज कीनी उत पूज खान बहुर राज दीनी कहूं फूल राजा हवै बैठा कहूं सिमट पयो।

दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण खाता। जे अस तुज तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुख तो हवै मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्याय है, ताकि काल निकट नह आय है। रक्षा होए ताहि सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो, ताकि ताप तनक मोहरे हो। रिद सिद्ध कर्म सब होई, दुष्ट शाह श्वै सकै न कोई।

राम कले महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तपाया सहज सेती मन वजियां वादाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईयां शब्दोता गावहो हरि तेरा मन जिनी वसाया कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारणा अंगीकार ओह करे तेरा कार्य सब सवारणा सबना गलां समरथ स्वामी सो क्यों मन हो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाही घर तेरा घर ता तेरा सब किश है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिन कै मन वसया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहेब क्या नाही घर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम

कहै नानक तह सुख हुआ तित कर अनहद वाजे। आनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे सुने सच्ची बाणी, संत साजन भए सरसे पूरे गुर ते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित सत गुर रहया पर पूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। मुंदावणी महला पंजवां, थाल विच तिन वस्तु पइयो सत संतोख विचारो। अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबस आधारो। जे को खावे जे को पुंचै तिसका हुए उधारो। एह वसत तजी नह जाई नित नित रख उरतारो। तम संसार चरण लग तरियै सब नानक ब्रह्म पसारो। सलोक महला।

पौड़ी। तिथै तू समरथ जिथै कोए नाहे, ओथै तेरी राख अग्नि उदर माहे। सुन कै जम के दूत नाए तेरै छड जाहे, पहु जल बिखम असगाहौ गुर शब्दी पार पाहे। जिन कौ लगी प्यास अमृत से खाहे, कल मैं एहो पुन गुण गोविंद गाहे। सब

0: आओ जी गुरु मुखो।
1: सानू
0: सारयां नू रल मिल बैठण दा सुभाग मिलिया है। साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन हजूरी विच बैठे हां। अठवें पातशाह बाला प्रीतम धन श्री गुरु हरकृष्ण सच्चे पातशाह जी का प्रकाश दिहाड़ा भी है। सिख जगत विच खास करके दिल्ली विच बहुत धूमधाम नाल उत्साह नाल संगतां मनाउंदियां हन। आओ आपां रल मिल के कुछ चिर अपने भले वास्ते सतगुरु जी का जस गायन करिए। उन्हां नूं वड्डियां कहण नाल उन्हां ने वड्डियां नहीं हो जाना, ते सारी दुनिया छोटा कही जावे उन्हां ने छोटिया नहीं हो जाना। जे सब मिलकै आखण पाहे वड्डा ना होवै घाट ना ओ वधदा है ना घटदा है। ना वाहिगुरू नूं फर्क पैंदा है ना ओ वड्डा ही हुंदा है। सारी दुनिया वड्याई करे ते ना सारी दुनिया दे कहण नाल ओ छोटा ही हुंदा है। हाँ ये गल जरूर है कि उन्हूं धन धन कहण वाले खुद धनता योग बन जाते हैं। उन्हूं वड्डा वड्डा कहण वाले खुद वड्डे बन जाते हैं। ना वो वड्डा हुंदा है ना वो छोटा ही हुंदा है। उन्हूं धन कहण नाल असी धन धन हो जाएंगे। सवाओ श्री हरकृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए। अपनी सुरत द्वारा अपने गुरु जी नूं वेखिए। जिन्ना जिन्ना ने डिठा निहाल हो गए ते आपां अपनी सुरत द्वारा गुरु हरकृष्ण सच्चे पातशाह दे दर्शन करिए। रल मिल के कुछ चिर बाबाणियां कहानियां पुत सपुत करेन। इस पंक्ति नूं सफलियां करदियां पुत्र सपुत्र बनण दी कोशिश करिए। बाबाणियां दियां बाबियां दियां कहानियां कहण नाल पुत सपुत बन जांदे ने। बाबाणियां बाबियां दियां कहानियां कहण नाल बाबाणियां कहानियां की करदियां ने पुत सपुत करेन पुत्र सपुत्र बन जाते ने नलायक लायक बन जाते ने। बाबियां दियां कहानियां कहण नाल पुत सपुत हो जाते हैं। सो आपां भी रल मिल के गाइए पढ़िए सुनीए हो सकता है उन्हां दी जिंदगी चों कुछ साढ़े भी पल्ले पै जाए साडा भी जीवन सफल हो जाए। आ वचन पढ़िए। जिवें चंद चढ़दा है पूर्णमाशी वाली रात नूं चंद्रमा पूरा हुंदा है उस रात दिन वर्गा चानण हो जांदा है। जदों चंद चढ़िया हनेरा दूर हो गया। इसे तरह साडे अंदर गुरु जी दे ज्ञान दा चानण हुंदा है प्रकाश हुंदा है ते साडे अंदर अज्ञानता दा हनेरा दूर हो जांदा है। इसे तरह साडे गुरु साहिबाना दा आउणा चाहे गुरु नानक साहिब होण चाहे साहिब गुरु अर्जन देव महाराज होण चाहे साहिब सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहिब होण उन्हां दे आउण नाल संसार विच्चों वहमां भरमां पखंडां कर्मकांडां जातां पातां वहमां भरमां दा हनेरा दूर होया। उस हनेरे दी गल है चाहे अंदर दा होवे चाहे बाहर दिसदा जो नज़र आउंदा है चाहे ओ होवे ते चाहे अज्ञानता दा वहमां भरमां दा हनेरा होवे ए दीवे दे आउण नाल चंद्रमा दे आउण नाल दूर हुंदा है। ते सतगुर चंद्रमा स्वरूप हन सूरज रूप हन ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਚਾਨਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਚਾਨਣ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਠੋਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ, ਟੋਇਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਡਿੱਗਣਾ ਸੀ, ਡਿੱਗ ਡਿੱਗ ਕੇ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਐਸੇ ਚਾਨਣ ਮਨਾਰੇ ਬਣੇ, ਐਸੇ ਚੰਦ ਬਣ ਕੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਠੋਕਰਾਂ ਵੱਜਣੀਆਂ ਸੀ, ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਠੋਕਰਾਂ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਚਾਨਣ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਗਾਈਏ, ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ।

वाहे वाहे वाहे वाहे वाहे वाहे वाहा वाहे वाहे वाहे वाहे वाहे। जुड़े रहो जुड़े रहो, अखां बंद रखियो, सारे गुरु वाहे गुरु वाहे।

0: सुनी है, पढ़े सुने क्या हुई, जो सहज ना मिले सोई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: श्री हर कृष्ण जी ध्याइए, जिस दिठे साधक जाए। गुरु प्यारी सत्संग जी, 5 मिनट का समा हो रहा है, जिनी देर श्री गुरु ग्रंथ साहब जी अपने विराजमान नहीं होंगे उन्ना चर तुसी सारे ही प्लीज बैठे रहो, 5 मिनट का समा हो रहा है। सो बाबा जी हुणां दा बहुत धन्यवाद। अगे पहला जदों जिहड़े हाल दे विच असीं बैठे हाँ, जदों भी ये आए सी तां इन्हां ने 3 दिन जो दीवान लाए सारी माया इत्थे छड्ड गए, क्योंकि इन्हां नूं पता इन्हां ने बहुत वड्डा स्थान इंडिया दे विच बनाया, इन्हां नूं पता ये स्थान किवें बणदे ने। सो इन्हां दा गुरु घर की कमेटी दे 21 मैंबर ने, और तुहाडी सारी संगत जिहड़े कि 10,000 मैंबर ने इस गुरु घर दे, तुहाडे सारिआं वल्लों बाबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और नाल दी नाल जिदां कहिंदे हुंदे ने, पूर्णमासी नूं जदों चंद चढ़दा तां गोडी मार के चढ़दा। सो बाबा जी भी गोडी मार के 10 सालां बाद फिजिकली तौर ते इन्हां ने कीर्तन अज कीता, क्योंकि पहलां कठिनाइयां सीगियां, कई किस्म दे झगड़े झेड़े सी। सो 10 सालां बाद अज बाबा जी ने सारी संगत दे अगे जो प्रोग्राम श्री गुरु कृष्ण देव जी का सुनाया, सो बड़े विस्तार दे नाल सुनाया। सो आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

अलैकुम ओंकार सतगुरु प्रसाद जय कर कीर्तक हे करते कह बेटा रो ततगुर गाव सुहला सुबर सृजन हारो तुम गाव मिटे निर पाव का सुहला हाँ वर रित सुहेला सदा सुख हो रहा नित नित जिय डे समार दिन देखेगा देवन हार तेरा दान कीमत ना पव तिस दाते कवन सुमार संबद शाह लिखिया मिल कृपा बतेल देहो सज्जन असिसड़िया ज्यो हो वह साहिब सुमेल कर कर पहुंचा सदन नित पवन सदन हार सिमरिय नानक से दे आवन राग समहला पहला से कर से गुर से उपदेश गुर गुर एक विस्नेक बाबा जय कर कर तकीर्त हो सो कर राख बढ़ाई तो रहा विश्व ठसियां कड़ियां पहला थेते वरिमा हो हुआ सूरज कुरत अनेक नानक करते किते बेश राग तना श्री महला पहला गगन में थाल रब चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोते तोप मलिया अनलो पवन चमरो करे शकल बन राय फुलंत ज्योति कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत पेरी रहाओ सहस तब नैन नन नैन है तोहे को सहस मोरत नन एक तोहे सहस पद विमल नानक पद गंध बिन सहस तब गंध उज्जल तुम है सब मह जोत जोत है सोए तिस दे तन समय तनन होए गुरसाखी जोत प्रगट होए जो तिस पाव वैश्वरती होए हर चरण कबल मकरंत लोभित मनो अन दिन मह अहि प्यासा कृपा जल देह नानक सारं को होए जाते तेरा नाय वसा रागोड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बह भरिया मेरे साधु खंडल खंडा हे पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हार लिप मंडल मंडा हे कर साधु अंजली पन वड्डा हे कर डंडौत पन वड्डा हे रहा शाकत हर रसाद न जाड़िया तिने अंतर हो मैं कंडा हे ज्यों ज्यों चले चुबै दुख पावै जमकाल सह सिर डंडा हे हर जन हर हर नाम सुबाने दुख जन्म मरण पव खंडा हे अबना से पुरख पाया परमेश्वर बहु शोभ खंड ब्रह्मंडा हे हम गरीब मुस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वड्डा हे जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे हे सुख मंडा हे राग गौड़ीपुर भी महला पंजवा करो बिनंती सुनो मेरे मिता संत टहल की बेला इहा खाट चलो हर लहा गए बसन सुहेला औद गटै दिन सरैना रे मन गुर मिल काज सवार रहाओ एहो संसार बिकार संसे में त्रो ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगाए पिया वह एहो रस अकथ कथा तिन जानी डाको आयुष बिहारो हर गुर ते मन है बसेदा निज कर महल पावो सुख सहजे

हे निमाण्या दे माण निताण्या दे ताण सच्चे पातशाह धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे पवित्र चरणा कमला विखे अरदास बेनती है। सतगुरु आप जी ने अपार बख्श रहमत कीती है अमृत वेले तो लै करके ऐस वेले तक आप जिया ने अपने सिंघासन ते प्रकाशमान हो करके संगतां नूं दर्शन दीदार बख्शिश कीते। सतगुरु आप जी का कोटि कोटान शुकराना है, धन्नवाद है जी। इस वेले दीवाना दी समाप्ति होई है, आप जी दे सुख आसन दी सेवा सोहिला साहिब जी दे पाठ कीते ने। सतगुरु जीओ आप जी दे दर कर दे टहलियां पासों सेवावां निभाउंदे आं होईआं भुल्लां बख्श देणियां। आप जी कृपा करो अपने सुख आसन स्थाना विखे चल के विराजमान होवो, संगतां नूं खुशियां बख्शो, रात सुख शांति नाल बतीत करनी जी, अमृत वेले फिर संगतां नूं दर्शन दिदारे बख्शिश करने। सही गुरमुख प्यारे मिलने, जिना मिलिया तेरा नाम चिते आवे, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। बोल

ਸਰ ਨੀ ਪਾਇਆ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟਾਏ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਲਗ ਵੇਦ ਉਪਾਏ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਭਏ ਸਿੱਧ ਜਤੀ ਜਾਤੇ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਨੀਚ ਚੌਂਕੁੰਟ ਜਾਤੇ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਧਾਰੀ ਸਭ ਧਰਨਾ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਹਰ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕਿਉ ਸਗਲ ਆਕਾਰਾ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਮੈਂ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰਾ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਤਿਨ ਪਾਇਆ। ਸਲੋਕ ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁਖ ਭੰਜਨਾ, ਘਟ ਘਟ ਨਾਥ ਅਨਾਥ, ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਇਓ, ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਥ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਹਿ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨ ਭਾਈ, ਮਨ ਊਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਸਹਾਈ, ਜੈ ਮਹਾਭਿਆਨ ਦੂਤ ਜਮ ਦਲੈ, ਤਹਿ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤੇਰੇ ਚੱਲੈ, ਜੈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੈ ਅਤਿ ਭਾਰੀ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਕਿਨ ਮਾਹਿ ਉਧਾਰੀ, ਅਨਿਕ ਪੁਨਾ ਚਰਨ ਕਰਤ ਨਹੀਂ ਤਰੈ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਕੋਟ ਪਾਪ ਪਰ ਹਰੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਨਾਨਕ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਘਨੇਰੇ, ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਹੋਏ ਸੁਖੀਆ, ਲਾਖ ਕਰੋਰੀ ਬੰਧਨ ਪਰੈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਨਿਸਤਰੈ, ਅਨਿਕ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਤਿਖ ਨ ਬੁਝਾਵੈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਆਘਾਵੈ, ਜਿਹ ਮਾਰਗ ਜਾਤ ਕੇਲਾ, ਤੈ ਹਰ ਨਾਮ ਸੰਗ ਹੋਤ ਸੁਹੇਲਾ, ਐਸਾ ਨਾਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਈਐ, ਛੂਟਤ ਨਹੀਂ ਕੋਟ ਲਖਬਾਹੀ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਤਹਿ ਪਾਰ ਪੁਰਾਹੀ, ਅਨਿਕ ਬਿਘਨ ਜੈ ਆਏ ਸੰਘਾਰੈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤਤ ਕਾਲ ਉਧਾਰੈ, ਅਨਿਕ ਜੋਨ ਜਨ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਮ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਪਾਵੈ ਬਿਸਰਾਮ, ਹਉ ਮੈਲਾ ਮਲ ਕਬੂ ਨ ਧੋਵੈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਕੋਟ ਪਾਪ ਖੂਵੈ, ਸਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮਨ ਰੰਗ, ਨਾਨਕ ਪਾਈਐ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ, ਜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਗਨ ਜਾਹੇ ਨ ਕੋਸਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਊਹਾਂ ਸੰਗ ਤੋਸਾ, ਜੇ ਪੈਡੈ ਮਾਂਦ ਗੁਬਾਰਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਸੰਗ ਉਜਿਆਰਾ, ਜਹਾ ਪੰਥ ਤੇਰਾ ਕੋ ਨ ਸੁਝਾਨੂ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤਹਿ ਨਾਲ ਪਛਾਨੂ, ਜਹ ਮਹਾਭਿਆ ਤਪਤ ਬੋ ਕਾਮ, ਤੈ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਮ ਉਪਰ ਛਾਮੂ, ਜਹ ਤ੍ਰਿਕਾ ਮਨ ਤੁਝ ਆਕਰ ਖੈ, ਤਹਿ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਖੈ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਬਰਤ ਨਾਮ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਬਿਸਰਾਮ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਦਾਸ ਕੀ ਓਟ, ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਉਦਰੇ ਜਨ ਕੋਟ, ਹਰ ਜਸ ਕਰਤ ਸੰਤ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਹਰ ਹਰ ਔਖਦ ਸਾਧ ਕਮਾਤ, ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਨ ਕੀਨੋ ਦਾਨ, ਮਨ ਤਨ ਰੰਗ ਰਤੇ ਰੰਗੇ ਕੈ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਬਿਰਤ ਬਿਵੇਕੈ, ਹਰ ਕੈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕਉ ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ, ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਜਨ ਕਉ ਤ੍ਰਿਪਤ ਭੁਗਤ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕਾ ਰੂਪ ਰੰਗ, ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਤ ਕਬ ਪਰੈ ਨ ਭੰਗ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਜਨ ਸੋਭਾ ਪਾਈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕਉ ਭੋਗ ਜੋਗ, ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਤ ਕਛ ਨਾਹੀ ਬਿਯੋਗ, ਜਨ ਰਤਾ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਨਾਨਕ ਪੂਜੈ ਹਰ ਹਰ ਦੇਵਾ, ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਮਾਲਕ ਜੀਨਾ, ਹਰ ਧਨ ਜਨ ਕੁਆ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨਾ, ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਓਟ ਸਤਾਣੀ, ਹਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਨ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣੀ, ਓਤ ਪੋਤ ਜਨ ਹਰ ਰਸ ਰਾਤੇ, ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਨਾਮ ਰਸਮਾਤੇ, ਆਠ ਪੈਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਜਪੈ, ਹਰ ਕਾ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਛਪੈ, ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਮੁਕਤ ਬਹੁ ਕਰੇ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਸੰਕੇਤੇ ਤਰੇ, ਪਾਰ ਜਾਤਿਓ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ, ਕਾਮ ਧੇਨ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਮ, ਸਭ ਤੇ ਉੱਤਮ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ, ਨਾਮ ਸੁਣਤ ਦਰਦ ਦੁਖ ਲੱਥਾ, ਨਾਮ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਸੰਤ ਰਿਧ ਵਸੈ, ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੁਰਤ ਸਭ ਨਸੈ, ਸੰਤ ਕਾ ਸੰਗ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਈਐ, ਸੰਤ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ, ਨਾਮ ਤੁਲ ਕਛ ਅਵਰ ਨ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਾਵੈ ਜਨ ਕੋਇ। ਸਲੋਕ ਬਹੁ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤੀ, ਪੇਖੇ ਸਰਬ ਟੰਡੋਲ, ਪੂਜਸ ਨਾਹੀ ਹਰ ਹਰੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਮੋਲ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਾਪ ਤਾਪ ਗਿਆਨ ਸਭ ਧਿਆਨ, ਖਟ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤ ਵਿਖਿਆਨ, ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਿਰਿਆ, ਸਗਲ ਤਿਆਗ ਬਨ ਮਧੇ ਫਿਰਿਆ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਏ ਬਹੁ ਜਤਨਾ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਹਉਮੈ ਬਹੁ ਰਤਨਾ, ਸਰੀਰ ਕਟਾਏ ਹਉਮੈ ਕਰ ਰਾਤੀ, ਵਰਤ ਨੇਮ ਕਰੈ ਬਹੁ ਭਾਤੀ,
नहीं तोल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए इक बार, नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीवे, महा उदास पिसर थीवे, अगन माहे होमत प्राण, कनिकसु हैवर भूम दान, न्यौली कर्म करे बहु आसन, जैन मार्ग संजम साधन, निमक निमक कर शरीर कटावे, तौ पी होमे मैल न जावे, हर का नाम संसर कछ नाही, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाही, मन कामना तीर्थ देह छुट्टै, गर्भ गुमान मन ते हुट्टै, सोच करे दिन सर रात, मन की मैल न तन ते जात, इस देही को बहु साधना करे, मन ते कबू न बिखिया टरे, जल तो वै बहु देह नीत, शुद्ध का हुए काची पीत, मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे पतत बहुमूच, बहुत सियान जम का पौ व्यापै, अनेक जतन कर त्रिसन्ना त्रापै, भेख अनेक गन्ह बुझै, कोट उपाव दरगै नहीं सिजै, झूठ सनाही ऊपयाल, मोहे व्यापह माया जाल, अवर कर तू सगली जमडाने, गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने, हर का नाम जप दुख जाए, नानक बोले सह सुभाई, चार पदार्थ जे को मांगे, साजना की सेवा लागे, जे को अपना दुख मिटावे, हर हर नाम हृदय सदगावे, जे को अपनी शोभा लूरे, सा संगे हम मैं चूरे, जे को जन्म मरण ते डरे, साध जना की सरणी परे, जिस जन को प्रभु दर्स प्यासा, नानक ताके बल बल जासा, सगल पुरख में पुरख प्रधान, साध संग जाका मिटे अभिमान, आपस को जो जाने नीचा, सो गणिये सब ते ऊंचा, जाका मन हुए सगल कीरीना, हर हर नाम तिन कट कट चीना, मन अपने ते बुरा मिटाना, पिख है सगल श्रिष्ट साजना, सुख दुख जन सम दृष्टेता, नानक पाप पुन नहीं लिपा, निर्धन को धन तेरो नाओ, निथावे कौ नाओ तेरा थाओ, निमाणे कौ प्रभ तेरु मान, सगल कटा कौ देव दान, करण करावन हार स्वामी, सगल कटा के अंतर जामी, अपनी गत मित जान हो आपे, अपन संगा प्रवराते, तुमरी उस्त तुम ते हुए, नानक अवर न जान सकोए, सर्व धर्म है श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म, सगल क्रिया में उत्तम क्रिया, सा संग दुर्मत मल हिरिया, सगल उद्दम है उद्दम भला, हर का नाम जपो जी सदा, सगल बानी में अमृत बानी, हर को जस सुन रसन बखानी, सगल थान ते उत्तम थान, नानक जे घट वसै हर नाम, सलोक निर्गुण यार याने आ, सुप्रभ सदा संभाल, जिन किया तिस चीत रख, नानक निभही नाल, अष्टपदी रमैया के गुण चेत पुरानी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी, जिन तू सासवार सी गारिया, गर्भगन में जिने उबारिया, बार व्यवस्था तुझे प्यार है दूध, पर जोगन भोजन सुख सूद, बिरद पया ऊपर साख सैन, मुख प्याओ बैठ कौ दैन, यही निर्गुण गुण कछु न बूझै, बख्श ले हो तो नानक सीजै, जे प्रसाद तारू पर सुख बसै, सुत प्रात मीत बनता संग हसै, जे प्रसाद पीवै शीतल जला, सुखदाई पवन पाव कमुला, जे प्रसाद भोगै सबरसा, सगल समग्री संग साथ बसा, दीने हस्त पाव करने तरसना, तिसै त्यागवर संग रचना, ऐसाए दोख मूढ़ंत व्यापे, नानक काढ लेहु प्रव्यापे, आदंत जो रख नहार, तिस्यो प्रीत न करे गवारु, जाकी सेवा नव निध पावै, तास्यो मूड़ा मन नहीं लावै, जो ठाकुर सा सदा हजूरे, ताको अंधा जानत दूरे, जाकी टहल पावै दर गै मान, तिसै बिसारै मुकद जान, सदा सदा भूलन हार, नानक रख नहार पार, रतन त्या कौडी संग रचै, सा छोड़ झूठ संग मचै, जो छड़ना सो अस्थिर कर मानै, जो होवन सो दूर परानै, छोड़ जाए तिसका श्रम करै, संग सहाई तिस पर हरै, चंदन लेप उतारै धोए, गर्द प्रीत भस्म संग होए, अंधकूप में पतत विकराल, नानक काट लेहो प्रभ दयाल, करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करै दिन रात, बाहर भेख अंतर मल माया, छपस नाही कछ करै छपाया, बाहर ज्ञान ध्यान स्नान, अंतर व्यापै लोभ सुवान, अंतर अगन बाहर तन स्वाहा, गल पाथर कैसी तरह था, जाके अंतर बसै प्रभ आप,
नानक तेजन सह समा सुन अंधा कैसे मार्ग पावै कर गह लेहो ओड़ निभावै कहां बुझारत बुझै डोरा निष्कहिए तो समझै पूरा कहा विष्णपद गावै गुंग जतन करै ताओ पी सुर भंग कह पिंगल पर्वत पर भवन नहीं हो तू वहां उस गवन करतार करुणा मैं दीन बेनती करै नानक तुमरी कृपा तरै संग सहाय सुआवै न चीत जो बैराई तस्यो प्रीत बलुआ के गृह पीतर बसै अनंद केल माया रंग रसै दृढ़ कर मान मने प्रतीत काल न आवै मूढ़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महा लोभ द्रोह याहू जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख लेहु अपन कर कर्म तू ठाकुर तुम पैर दास जियो पिंड सब तेरी रास तुम वास पिता हम बारिक तेरे तुमरी कृपा मैं सुख कनेरे कोई न जाने तुमरा यंत ऊचे ते ऊचा भगवंत सगल समग्री तुमरै सूत्र धारी तुम ते हो सो आज्ञाकारी तुमरी गात्मिक तुम ही जानी नानक दा सदा कुर्बानी सलोक देनहार प्रभ छोड़ कै लागै आन सुआए नानक कहू न सी जई बिन नावै पत जाए अष्टपदी दस वस्तु ले पाछै पावै एक वस्तु कारण बिकोट गवावै एक भी न दे दस भी हिर ले तौ मूड़ा कहू कहा करे जिस ठाकुर स्यो नाही चारा ताकू की जय सद नमस्कारा जाके मन लागा प्रभ मीठा सर्व सूखता हूँ मन उठा जिस जने अपना हुक्म नाया सर्व थोक नानक तिन पाया अगणत साहु अपनी दे रास खात पीत बरत अणद उलास अपनी अमान कछ बहुर साहु ले अज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रतीताप ही खोवे बहुर उसका विश्वास न होवे जिसकी बस किसी आज्ञा रखै प्रभ की आज्ञा मान मत है उसते चौगन करै निहाल नानक साहिब सदा दयाल अनिक भांत माया के हेत सर पर होत जान अनेत बिर की छाया स्यों रंग लावै ओह बिन सह ओह मन पछतावै जो दिसै सो चालन हार लपट रहो तै अंध अंधार बटाऊ स्यों जो लावै नेहे ताको हाथ न आवै केहे मन हर के नाम की भी सुखदाई ना कर कृपा नानक आप लै लाई मिथिया तन धन कुटुंब सुबाया मिथिया हो मैं ममता माया मिथिया राज जोबन धन बाल मिथिया काम क्रोध विकराल मिथिया रथ हस्ती अस्व वस्त्रा मिथिया रंग संग माया पीख हस्ता मिथिया त्रोमो अभिमान मिथिया पशु पर कर्तुगमान अस्थिर भगत साध की शरण नानक जप जप जीवे हर के चरण मिथिया श्रवण पर निंदा सुन है मिथिया हस्त पर दर्व को हिर है मिथिया नेत्र पेखत पर त्रैरूपाद मिथिया रसना भोजन अनुस्वाद मिथिया चरण पर विकार को ताव है मिथिया मन पर लोभ लुभाव है मिथिया तन नहीं पर उपकारा मिथिया बास लेत बिकारा बिन बूझे मिथिया सब पहे सफल देह नानक हर हर नाम लय बिरथी साकत की आरजा साच बिना कहो तसूचा बिरथा नाम बिना तन अंध मुखावता कह दुर्गंध बिन सिमरन दिन रैन वृथा बिहाये मेघ बिना ज्यो खेती जाए गोविंद भजन बिन वृथे सब काम ज्यो कृपण के निरार्थ दाम धन धन ते जन जे कट बस्यो हर नाऊ नानक ताके बल बल जाऊ रहत अवर कछवर कमावत मनि प्रीत मुखो गंडलावत जानन हार प्रभु परबीन बाहर भेख न काऊ भीन अवर उपदेशय आप न करै आवत जावत जन्मै मरै जिसके अंतर बसै निरंकार तिसकी सीख तरै संसार जो तुम भानी तिन प्रभ जाता नानक उनजन चरण पराता करूं बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना किया या पहमाने आप है आप आप करत नबेरा किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा उपाव से अनुप सगल ते रहत सब कछ जाने आत्म की रहत जिस भाव है तिस लय लड़ लाए तांत नंत रहा सुमाए सो सेवक जिस कृपा करी निमक निमक जप नानक हरी श्लोक
काम क्रोध अर लोभ मोह बिनस जाए अहंग मेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जेह प्रसाद छत्ती अमृत खाहे तिस ठाकुर कौ रख मन बाहे जेह प्रसाद सुगंध तन लाव है तिसको सिमरत परम गत पाव है जेह प्रसाद बसै सुख मंदर तिसह त्याहे सदा मने अंदर जेह प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पहर सिमरहु तिस रसना जेह प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याहिय त्यावन जोग जेह प्रसाद पाठ पटंबर हंडावै तिसह त्याकत अवर लुभाव है जे प्रसाद सुख से सोई जय मन आठ पहर ताका जस गा विजय जे प्रसाद तू सब को माने मुक्ता को जस रसन बखाने जे प्रसाद तिरु रहता धर्म मन सदा त्याहि केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जप दर गहमान पाव है नानक पद से ती कर जाव है जे प्रसाद आरु कंचन देही लिव लावो तिस राम स्नेही जे प्रसाद तेरा उल्ला रहत मन सुख पाव है हर हर जस कहत जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाकी मन सरनी पार ठाकुर प्रभता कह जे प्रसाद तुझ को ना पहुँचे मन साथ साथ सिमरहु प्रभु उचे जे प्रसाद पाही दुर्लभ देहे नानक ताकी भगत करेहे जे प्रसाद आप उखन पहरी जय मन ति सिमरत क्यों आलस की जय जे प्रसाद अश्वहस्त सवारी मन तिस प्रभ कौ कबहू न बिसारी जे प्रसाद बाग मिलक तना राख प्रोय प्रभ अपने मना जिन तेरी मन बणत बनाई उठत बैठत सद तिसह त्याई तिसह त्याए जो एक अलख है ईहा ऊहा नानक तेरी रखै जे प्रसाद करै पुन बहुदानु मन आठ पहर कर तिसका त्याहानु जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभ कौ साथ साथ चितारी जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरहु सदा अनूप जे प्रसाद तेरी निकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात जे प्रसाद तेरी पत रहै गुर प्रसाद नानक जस कहै जे प्रसाद सुनह करण नाद जे प्रसाद पेखह विस्माद जे प्रसाद बोलै अमृत रसना जे प्रसाद सुख सहजे बसना जे प्रसाद हस्त कर चल है जे प्रसाद संपूर्ण फल है जे प्रसाद परम गत पाव है जे प्रसाद सुख सह सुमाव है ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागहु गुर प्रसाद नानक मन जागहु जे प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभ को मूल न मनहु बिसार जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूढ़ तू ताको जाप जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसह जान मन सदा हजूरे जे प्रसाद तू पाव है साच रे मन मेरे तू ता सिवराच जे प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपै जप सोए आप जपाए जपै सो नाओ आप गावाए सुहर गुण गाओ प्रभ कृपा ते हुए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास प्रभ सुप्रसन्न बसै मन सोए प्रभ दया ते मत उत्तम होए सर्व निदान प्रभ तेरी मया आपू कछु न किन्हु लया जित जित लावो तित लगै हरनाथ नानक किन कह कछु नहाथ सलोक अगम गाद पार ब्रह्म सोए जो जो कह सुमुखता होए सुन मीता नानक बिनवंता साजना की अचरज कथा अष्टपदी साध के संग मुख उजल होत साध संग मल सगली खोत साध के संग मिटे अभिमान साध के संग प्रगटे सुज्ञान साध के संग बुझे प्रभ नीरा साध संग सब होत नबेरा साध के संग पाए नाम रतन साध के संग एक ऊपर जतन साध की महिमा बरने कौन प्राणी नानक साध की शोभा परमा समानी साध के संग गोचर मिले साध के संग सदा पर फुले साध के संगा वह बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग सब की रेन साध के संग मनोहर बैन साध के संग न कतहुं तावै साध संग स्थित मन पावै साध के संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभ सु प्रसन्न साध संग दुश्मन सब मीत साधु कै संग महापुनीत साध संग किस्यो नहि बैर साध के संग न भीगा पैर साध के संग ना ही को मंदा साध संग जाने परमानंदा साध के संग ना ही होताप
साधक संगत जय सब आप आपे जाने साध बड़ाई नानक साध प्रभु बने आई साधक संग न कब हूं तावै साधक संग सदा सुख पावै साधु संग बस्त गोचर लह साधु कै संग अजर सह साधक संग बसै थान उच्चै साधु कै संग माहिल पहुंचे साधक संग दड़ै सब धर्म साधक संग केवल पार ब्रह्म साधक संग पाए नाम निधान नानक साधु कै कुर्बान साधक संग सब कुल उधारै साधु संग साजन मीत कुटुंब निस्तारै साधु कै संग सो धन पावै जिस धन ते सब को वरसावै साधु संग धर्म राय करि सेवा साधक संग सुभा सुर देवा साधु कै संग पाप लायन साधु संग अमृत गुण गायन साधक संग सर्व थान गामु नानक साधु कै संग सफल जनामु साधक संग नहीं कछु काल दर्शन भेटत होत निहाल साधक संग कलूकत हरै साधक संग नरक पर हरै साधक संग ईहा ऊहा सुरेला साध संग बिछरत हर मेला साध संग बिछरत हर मेला जो इच्छा सोई फल पावे साधक संग न बिरथा जावे पार ब्रह्म साध रिद बसै नानक उदरै साध सुन रसै साधक संग सुनो हर नाऊ साध संग हर के गुण गाऊ साधक संग न मन ते बिसरै साध संग सर पर निस्तरै साधक संग लगै परम मीठा साधु कै संग कट कट डीठा साध संग भय आज्ञाकारी साध संगत भई हमारी साधक संग मिटे सब रोग नानक साध भेटे संजोग साधु की महिमा वेद न जाने है जेता सुने तेता बखियाने साधु उपमा त्यो गुण ते दूर साधु उपमा रही भरपूर साध की शोभा का ना ही अंत साध की शोभा सदा बेअंत साध की शोभा ऊंच ते ऊंची साध की शोभा मूच ते मूची साध की शोभा साध बने आई नानक साध प्रभ भेद न पाई श्लोक मन साचा मुख साचा सोए अमर न पेखे एक बिन कोए नानक लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोक जैसे सूर सर्व कौ शोक ब्रह्म ज्ञानी कह दृष्ट समान जैसे राज रंग कौ लागे तुल पवान ब्रह्म ज्ञानी कह धीरज एक ज्यों बसदा को खोदै को चंदन लेप ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाऊ नानक ज्यो पावक का सह सुभाऊ ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागे जला ब्रह्म ज्ञानी कै मन हुए प्रगास जैसे तारू पर आकाश ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र शत्र समान ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा मन अपना है सब ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन पहि नानक जिन प्रव्याप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल कीरी नात्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न भया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट मृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी कुप्रयास ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाहा ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार माहा ब्रह्म ज्ञानी कै नाही धंधा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा ब्रह्म ज्ञानी कै हुए सुफला ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदारु नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसारु ब्रह्म ज्ञानी कै इक रंग ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधारु ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवारु ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत ब्रह्म ज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कै कर सदा आनंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का वेता ब्रह्म ज्ञानी एक संग हिता ब्रह्म ज्ञानी कै हुए अचिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञानी जिस करह प्रभ आप ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाही ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माही ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाए दाक्षर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने
ब्रह्म ज्ञानी कंत न पारू, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीवै नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विदाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी। श्लोक उर धारै जो अंतर नाम, सर्व में पेखै भगवान। निमक निमक ठाकुर नमस्कार, नानक अपर सगल निस्तार। अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परसो, मन में प्रीत निरंजन दर्शो। पर त्रै रूप न पेखै नेत्र, साध की टहल संत संग हेत। कर्ण न सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा। गुर प्रसाद विख्या पर हरै, मन की वासना मन ते टरै। इंद्री चित पंच दोख ते रहत, नानक कोट मध्य को ऐसा। पर सु बैसनु सोजि सुपर सुपर, सन बिशन की माया ते हुए भिन्न। कर्म करत हुए नि कर्मु, तिस बैसनु का निर्मल धर्मु। काहू फल की इच्छा नहीं बाचै, केवल भगत कीर्तन संग्रचै। मन तन अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल। आप दृढ़ अवरै नाम जपावै, नानक वैष्णु परम गत पावै। भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्यागै दुष्ट का संग। मन ते बिनसै सगला भरम, कर पूजै सगल पार ब्रह्म। साध संग पापा मल खोवै, तिस भगवती की मत उत्तम होवै। भगवंत की टहल करै नितनीत, मन तन अर्पै विशन प्रीत। हर के चरण हृदय बसावै, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै। सो पंडित जो मन पर बुद्ध है, राम नाम आत्म महसूदै। राम नाम सारस पीवै, उस पंडित कै उपदेश जग जीवै। हर की कथा हृदय बसावै, सो पंडित फिर जो नायावै। वेद प्राण सिमरत बूझै मूल, सूखम मै जानै अस्थूल। चौ वर्णा को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा देश। बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चौ वर्णा मै जपै को नाम। जो जो जपै तिसकी गत होए, सात संग पावै जन कोए। कर कृपा अंतर उर धारै, पस प्रेत मुक्त पाथर को तारै। सर्व रूप का उखद नाम, कल्याण रू मंगल गुण गाम। काहू जुगत कितै न पाइय धर्म, काहू जुगत कितै न पाइय धर्म। नानक तिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म। जिसकै मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सतराम दास। आत्म राम तिस नदरी आया, दास दसंतन भाई तिन पाया। सदा निकट निकट हर जानू, सो दास दरगह परवान। अपने दास को आप कृपा करै, तिस दास को सब सोजी परै। सगल संग आत्म उदास, ऐसी जुगत नानक राम दास। प्रभ की आज्ञा तुम हितावै, जीवन मुख सो कहावै। तैसा हरख तैसा सोग, सदा अनंत है नहीं वियोग। तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिख खाटी। तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंग तैसा राजान। जो वरताय साई जुगत, नानक को पुर कही है जीवन मुक्त। पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जित जित कर रखै तैसा तिन्ना। आपे करन करावण जोग, प्रभा वै सोई फुन होग। पसुर आप अंत तिरंग, लखे न जाहि पार ब्रह्म के रंग। जैसी मत दे तैसा प्रगासु, पार ब्रह्म करता अविनाश। सदा सदा सदा दयालु, सिमर सिमर नानक भय निहाल। श्लोक उस्तत करै अनेक जन, अंत न पारावार। नानक रचना प्रभ रची, बहुविध अनेक प्रकार। अष्टपदी कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी। कई कोट भय तीर्थ वासी, कई कोट बन भ्रमै उदासी। कई कोट वेद के श्रोते, कई कोट तपीसर होते। कई कोट आत्म ध्यान धार है, कई कोट कब का विचार है। कई कोट नवतन नाम त्यावै, नानक करते कंत न पावै। कई कोट भय अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी। कई कोट कृपण कठोर, कई कोट अभेगातम निकोर। कई कोट पर दर्व को हिर है, कई कोट पर दुख न कर है। कई कोट माया श्रमाही, कई कोट प्रदेश परमाही। जित जित लावो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना। कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी। कई कोट पंखी सर्प पाए, कई कोट पात्र बिरख निप जाए। कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भूमंडल। कई कोट शशिय सूर नखियत्र, कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र।
सगल समग्री अपने सूतार है, नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार है। कई कोट राजस्तम सातक, कई कोट वेद प्राण सिमर तर शास्त्र, कई कोट कीरतन समुंद, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किए चिर जीवे, कई कोट गिरिमेर स्वर्ण तीवे, कई कोट जकिनर पिसाच, कई कोट भूत प्रेत सूकर मृगाच, सब ते नेरे सबू ते दूर, नानक आप लिप्त रहा भरपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुर्ग निवासी, कई कोट जन्म जीवे मरह, कई कोट बहजोनी फिर है, कई कोट बैठत ही खाहे, कई कोट काल है थक पाहे, कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया मह चिंत, जह जय पाणा तह तह राखे, नानक सब कुछ प्रभ कह हाथे, कई कोट भय बैरागी, राम नाम संग तिन लिव लागी, कई कोट प्रभ को खोजंते आत मह पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रप्यासु तिन को मिल्यो प्रभ विनाशु, कई कोट मांगे सतसंग पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनको हुए अब सुप्रसन्न, नानक ते जन सदा धन धन, कई कोट खानी अरखंड, कई कोट आकाश ब्रह्मंड, कई कोट हुए अवतार, कई जुगत किन्नु विस्तार, कई बार पसरे उपासार, सदा सदा एक एक अंकार, कई कोट किन्ने भोपात, प्रगति हुए ब्रह्मा ही समात, ताकांत न जाने कोई आपे आप, नानक प्रभ सोई, कई कोट पार ब्रह्म के दास, तिन हो तातम प्रगास, कई कोट तत् के बेते, सदा निहारे को नेत्रे, कई कोट नाम रस पी वह, अमर पय सद सद ही जीवे, कई कोट नाम गुण गाव है, आत्म रस सुख सह समावे, अपने जन को साथ साथ समारे, नानक कोई परमेश्वर के प्यारे, श्लोक करण कारण प्रभ एक है, दूसर नाही कोए, नानक तिस बलिहार ने जल थल मही अल सो अष्टपदी, करण करावन करने जोग, जो तिस भावै सोई हो, खिन में थापु थापन हारा, अंत नहीं किछ पार आवारा, हुक्मे धार अतार रहावै, हुक्मे उपजै हुक्म समावै, हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार, हुक्मे अनिक रंग प्रकार, कर कर देखे अपनी वडियाई, नानक सब मैं रहा समाई, प्रभावै मानुक गत पावै, प्रभावै तां पात्र त्रावै, प्रभावै बिन शास्ते राखै, प्रभावै तां हर गुण पाखै, प्रभावै तां पत तुधारै, आप करै अपन बिचारै, दुहां सिरियां काप स्वामी, खिलै विकसै अंतर जामी, जो भावै सो कार करावै, नानक दृष्टि अवर न आवै, कहो मानुक ते क्या हुए आवै, जो तिस भावै सोई करावै, इसके हाथ होए तां सब किछ ले, जो तिस भावै सोई करे, अनजानत बिखिया मह रचै, जे जान तापना बचै, भरमे भूला दह दिसतावै, निमक माए चार कुंट फिर आवै, कर कृपा जिस अपनी भगत दे, नानक ते जन ना मिले, खिन मैं नीच कीट को राज, पार ब्रह्म गरीब नवाज, जाका दृष्ट कछु न आवै, तिस तत्काल दह दिस प्रगटावै, जाको अपनी करै बख्शी, ताका लिखा न गने जगदीश, जीव पिंड सब तिस की रास, घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रगास, अपनी बनता बनाई, नानक जीवै देख बढ़ाई, इसका बल नाही साथ, करन करावन सर्व को नाथ, आज्ञाकारी बपरा जियो, जो तिस भावै सोई फुन थियो, कब हूँ ऊंच नीच मह बसै, कब हूँ सोग हर करंग हसै, कब हूँ निंद चिंद व्यवहार, कब हूँ ऊब आकाश पयाल, कब हूँ बेता ब्रह्म विचार, नानका मिलावनहार, कब हूँ नृत्य करै भोपात, कब हूँ सोए रहै दिन रात, कब हूँ महाक्रोध विकराल, कब हूँ सर्व की होत रवाल, कब हूँ हुए वह बड़ राजा, कब हूँ पेखारी नीच का साजा, कब हूँ अपकीरत में आवै, कब हूँ भला भला कहावै, ज्यों प्रभ राखे त्यों ही रहे, गुर प्रसाद नानक सच कहे, कब हूँ हुए पंडित करे बख्यान, कब हूँ मोन धारी लावै ध्यान, कब हूँ तट तीर्थ स्नान, कब हूँ सिद्ध साधिक मुख ज्ञान, कब हूँ कीट हस्त पतंग हुए जिया, अनिक जोन भरमै परमिया, नाना रूप ज्यो सुहागी दिखावै, ज्यो प्रभ भावै तिवै नचावै, जो तिस भावै सोई होए, नानक दूजा अवर न कोए, कबू साध संगत त्यो पावै, उस स्थान ते बहुर न आवै, अंतर होए ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनाश, मंत्र नाम रते करंग, सदा बसै पार ब्रह्म कै संग, ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग जो समाना, मिट गए गवन पाए विश्राम,
नानक प्रभ कै सद कुरबान। श्लोक सुखी बसै मसकीनिया आप निवार थले, बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपदी। जिसके अंतरा जब मानु सो नरक पाती होवत स्वानु, जो जाना मैं जो गणवंत सो होवत विष्टा का जंत। आपस को करवंत कहावे जिन मरे बहुजून प्रमावे, धन भूम का जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा अज्ञान। कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे, नानक इहां मुक्ता गै सुख पावे। धनवंता होए कर गरबावे, तृण समान कत संग न जावे। बहु लश्कर मान कूपर करे आसो, पल भीतर ताका हुए विनाश। सब ते आप जानै बलवंत, खिन मै हुए जाए पसमंत। किसे न बधै आप अहंकारी, धर्म राय तिस करे खुआरी। गुर प्रसाद जाका मिटै अभिमान, सो जन नानक दर गै परवान। कोट कर्म करै हो धारी, श्रम पावे सगले बिरथारे। अनिक तपस्या करे अहंकारु, नरक सुर्ग फिर अवतारु। अनिक जतन करा तुम नहीं द्रवै, हर दर गै कहो कैसे गवै। आपस को जो भला कहावै, तिसे भला ही निकट न आवै। सर्व की रेंजा का मन होए, कहो नानक ताकी निर्मल सोए। जब लग जाने मुझते कछ हुए, तब सिस को सुख ना ही कोए। जब ही जाने मैं किछ करता, तब लग गर्भ जोन मैं फिरता। जब तारे को बैरी मीत, तब लग नीचर ना ही चीत। जब लग मुह मगन संगमाई, तब लग धर्म राय दे सजाए। प्रभ कृपा ते बंधन टूटे, गुर प्रसाद नानक हो छूटे। सहस कटे लक उठतावै, तृप्त न आवै माया पाछै पावै। अनिक भोग बिख्या के करै, नह तृप्तावै खप खप मरै। बिना संतोख नहीं को राजै, सुपन मनोरथ वृथे सब काजै। नाम रंग सर्व सुख होए, बड़भागी किसै प्राप्त होए। करण करावन आपे आप, सदा सदा नानक हर जाप। करण करावन करन हार, किसके हाथ कहा विचार। जैसी दृष्ट करे तैसा होए, आपे आप आप प्रभ सोए। जो किछ कीनो सो अपने रंग, सब ते दूर सबहु कै संग। बूझै देखै करै विवेक, अपहे का पहे अनेक। मरै न बिनसै आवै न जाए, नानक सद ही रहया समाए। आप उपदेशै समझै आप, आपे रचिया सब कै साथ। आप कीनो अपन विस्तारो, सब कछ उसका करने हार। उसते भिन्न कहो किछ होए, थान थनंतर एक कैसो। अपने चलताप करने हार, कौत करे रंग आपार। मन मैं मन अपने माहे, नानक कीमत कह न जाए। सत सत सत प्रभ स्वामी, गुर प्रसाद किने वखियानी। सच सच सच सब कीना, कोट मधे किने बिरलै चीना। भला भला भला तेरा रूप सुंदर अपार अनूप। निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी, घट घट सुनी श्रवण बखियानी। पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत, नाम जपै नानक मन प्रीत। श्लोक संत शरण जो जन परै, सो जन उदरन हार। संत की निंदा नानका, बाहुर बाहुर अवतार अष्टपदी। संत कै दुखन आर जा कटै, संत कै दुखन जमते नहीं छुटै। संत कै दुखन सुख सब जाए, संत कै दुखन नरक मह पाए। संत कै दुखन मत होए मलीन, संत कै दुखन शोभा ते हीन। संत के हते कौ रखै न कोए, संत कै दुखन थान प्रष्ट होए। संत कृपाल कृपा जे करै, नानक संत संग निंदक भी करै। संत के दुखन ते मुख पवै, संतन कै दुखन काग जूं लवै। संतन कै दुखन सर्प जोन पाए, संत कै दुखन त्रिगत जोन किरमाए। संतन कै दुखन तृष्णा मैं जलै, संत कै दुखन सब को छलै। संत कै दुखन ते सब जाए, संत कै दुखन नीच निचाए। संत दुखी का ताउकु नाही, नानक संत पावै ता उए भी गत पाहे। संत का निंदक महा अतताई, संत का निंदक खिन टिकन न पाई। संत का निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा।
संत का निंदक राज तेहीन, संत का निंदक दुखिया अरदीन, संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा बिजोग, संत की निंदा दुख मैं दुख, नानक संत पावै ता उसका पी हुए मूख, संत का दुखी सदा अपवित, संत का दुखी किसे का नहीं मित, संत के दुखी को डान लागै, संत के दुखी को सब त्यागै, संत का दुखी महा अहंकारी, संत का दुखी सदा बिकारी, संत का दुखी जन मैं मरै, संत की दुखना सुख ते टरै, संत के दुखी को नाही ठाऊ, नानक संत पावै ता ले मिलाए, संत का दुखी अध बीच ते टूटै, संत का दुखी कितै काज न पहुँचै, संत के दुखी को ध्यान फरमाइयै, संत का दुखी उजड़ पाइयै, संत का दुखी अंतर ते तोथा, जो सास बिना मृतक की लोथा, संत के दुखी की जड़ किछ नाहि, आपन बीज आपे ही खाहि, संत के दुखी को वरन रखनहार, नानक संत पावै ता ले उबार, संत का दुखी इउं बिललाए, ज्यों जल बिहून मछली तलफड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजै, ज्यों पावक इंदर नहीं त्रापै, संत का दुखी छुटै खेला, ज्यों बुआड़ तिल खेत माहि दुहेला, संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सद मिथ्या कहत, किरत निंदक का तुर ही पया, नानक जो तिस भावै सोई थया, संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, संत के दुखी काओ दरगह मिले सजाए, संत का दुखी सदा सहकाइयै, संत का दुखी ना मरे ना जीवाइयै, संत के दुखी की पूजै नयासा, संत का दुखी उठ चले निराशा, संत का दुख न तृष्टै कोई, जैसा भाव है तैसा कोई हुए, पया किरत न मिटै कोई, नानक जानै सच्चा सोए, सब घट तिसके हो करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभु की उस्तत करो दिन रात, तिस हैते आवो सास गिरास, सब कछ वरतै तिसका किया, जैसा करे तैसा कुठिया, अपना खेल आप करने हार, दूसर कौन कहे विचार, जिसनो कृपा करे किसी अपन नाम दे, बड़ भागी नानक जन से श्लोक, तज हो सियानप सुरजन हो, सिमर हो हर हर राय, एक आस हर मन रख हो, नानक दुख भरम पहु जाय, अष्टपदी, मानुक की टेक वृथि सब जा, देवन काओ एक भगवान, जिसके दिए रह अभाय, बहुर न तृष्णा लग आए, मारे राखे को आप, मानुक कह किछ नाही हाथ, तिसका हुक्म भू सुख हुए, तिसका नाम रख कंठ पर हुए, सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक बिघन लागै कोए, पुस्तत मन मह कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सुहेला कर लह जियो, नैनो पेख ठाकुर का रंग, साध संग बिन सह सब संग, चरण चलो मार गोबिंद, मिट है पाप जपिए हर बिंद, कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दरगह नानक पूजल मथा, बड़भागी तेजन जग माहे, सदा सदा हर के गुण गाहे,
राम नाम जो करहे विचार, शीतनवंत गनी संसार, मन तन मुख बोलह हर मुखी, सदा सदा जानू ते सुखी। इको एक एक पछाने, इत उत कियो सोजी जाने, नाम संग जिसका मन मानिया, नानक तिन्ह निरंजन जानिया, गुर प्रसाद अपन आप सुजै, तिसकी जानहु तृष्णा बुझै, साध संग हर हर जस कहत, सर्व रोग ते ओ हर जन रहत, आन दिन कीर्तन केवल बखिया, गृहस्थ मैं सोई निर्वा, एक ऊपर जिस जन की आसा, तिसकी कटिया जम की फासा, पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिसह न लागे दुख, जिस कौ हर प्रभ मन चित आवै, सो संत सुहेला नहीं दुलावै, जिस प्रभ अपना कृपा करै, सो सेवक कौ किस ते डरै, जैसा सा तैसा दृष्टाया, अपने कार्य में आप समाया, सोधत सोधत सोधत सीजिया, गुर प्रसाद तत सब बुझिया, जब देखो तब सब किच मूल, नानक सो सूखम सोई अस्थूल, न किच जन्मे न किच मरे, आपन चलत आप ही करे, आवन जावन दृष्टन दृष्ट, आज्ञाकारी तारी सब सृष्ट, आपे आप सगल मह आप, अनिक जुगत रच थाप थाप, अविनाशी नाही किच खंड, तारन तार रहो ब्रह्मांड, अलख अपेव पुरख प्रताप, आप जपाए ता नानक जा, जिन प्रभ जाता सो सो बावंत, सगल संसार उदरै तिन मंत, प्रभ के सेवक सगल उदारण, प्रभ के सेवक दुख विसारण, आपे मेल लय कृपाल, गुर का शब्द जप भय निहाल, उनकी सेवा सोई लागै, जिस नौ कृपा करह बड़ भागै, नाम जपत पावह विश्राम, नानक तिन पुर कौ उत्तम करमान, जो किछ करै सो प्रभ कै रंग, सदा सदा बसै हर संग, सहज सुभाए होवै सो होए, करणै हार पछाणै सोए, प्रभ का किया जन मीठ लगाना, जैसा सा तैसा दृष्टाना, जिसते उपजे तिस माहे समाए, वे सुख निदान उन्हों बन आए, आपस को आप दीनु मान, नानक

अवगाहे पिता का जन्म के जाने पूत सगल परोई अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे जनदास नाम त्या वैसे त्यो गुण मैं जाको परमाए जन्म रह फिरिया वह जाए ऊंच नीच तिसके स्थान जैसा जनावे तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना भेख करे एक रंग नाना बिद किन्नु विस्तार प्रभ अविनाशी एक अंकार नाना चलत करे किन बाहे पूर रहो पूर्ण सब ठाए नाना बिद कर बणत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब घट तिसके सब तिसके ठाओ जप जप जीवे नानक हर नाओ नाम के धारे सगले जंत नाम के धारे खंड ब्रह्मंड नाम के धारे सिमृत वेद पुराण नाम के धारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के धारे आगास पाताल नाम के धारे सगल आकाश नाम के धारे प्रिया सब पवन नाम कै संग उतरे सुन श्रवण कर कृपा जिसे अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जनगत पाए रूप सत जाका सत अस्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जाकी बाणी सत पुरख सब माहे समाणी सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करनी निर्मल निर्मली जिस हे बुझाए तिसे सब भली सत नाम प्रभ का सुखदाई विश्वास सत नानक गुर ते पाई सत बचन साधु उपदेश सत ते जन जा कर गए प्रवेश सत निरत बुझै जे कोए नाम जपता की गत होए आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मित गत जिसकी श्रेष्ठ सुकर्ण हार अवर न बूझ करत विचार करते की मित न जाने किया नानक जो तिस भावै सो वरतिया बिस्मन बिस्म भय बिस्मार जिन बूझिया तिस आया स्वाद प्रभ कै रंग राजन रहे गुर कै बचन पदार्थ लहे ओए दाते दुख काटन हार जा कै संग तरै संसार जन का सेवक सो विड भागी जन कै संग एक लिव लागी गुण गोबिंद कीर्तन जन गावै गुर प्रसाद नानक फल पावै श्लोक आद सच जुगाद सच है पे सच नानक होसी पे सच अष्टपदी चरण सत सत परसनहार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखनहार नाम सत सत त्यावनहार आप सत सत सबधारी आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभक्ता सुरत सत सत जस सुनता बुझनहार को सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए सत स्वरूप हृदय जिन मानिया करण करावन तिन मूल पछानिया जा कह हृदय विश्वास प्रभ आया तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया भय ते निर्भउ हुए बसाना जिस ते उपजिया तिस माहे समाना बस्त माहे ले बस्त गडाई ताको भिन्ना कहना जाई बुझ है बुझनहार विवेक नारायण मिले नानक एक ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी ठाकुर के सेवक के मन प्रतीत ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत ठाकुर को सेवक जाने संग प्रभु का सेवक नाम कह रंग सेवक को प्रभ पालन हारा।

सेवक की राखै निरंकारा। सो सेवक जिस दया प्रवतार है, नानक सो सेवक साथ साथ सुमार है। अपने जन का पर दाटा कै, अपने सेवक की सर पर राखै। अपने दास को दे बढ़ाई, अपने सेवक को नाम जपाई। अपने सेवक की आपत राखै, ताकि गत मित कोई न लाखै। प्रभ के सेवकाओ को न पहुँचै, प्रभ के सेवक ऊंचते ऊंचे। जो प्रभ अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दादिस प्रगटाया। नेकी कीरी में कल राखै, भस्म करै लश्कर कोट लाखै। जिसका सास न काटत आप, ताकौ राखत दे कर हाथ। मानस जतन करत बहुपात, तिसके करत बिरथे जात। मार न राखे अवर न कोए, सर्व जिया का राखा सोए। काहे सोच कर हरे प्राणी, जप नानक प्रभ अलख विडानी। बारम बार बार प्रभ जपी है, पी अमृत्यु मंथन तृपी है। नाम रतन जिन गुरमुख पाया, तिस किच अवर नाही दृष्टाया। नाम धन नामो रूप रंग, नामो सुकर नाम का संग। नाम रस जो जन तृपताने, मंथन नाम है नाम समाने। उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन कै सदकाम। बोलो जस जे बा दिन रात, प्रभ अपने जन की नींदात। करै भगता तुम कह चाए, प्रभ अपने सिउ रह समाए। जो हुआ होवत सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पहचाने। तिसकी महिमा कौन बखानू, तिसका गुण कह एक न जानू। आठ पहर प्रभ सह हजूरे, कहो नानक से ही जन पूरे। मन मेरे तिन की ओट लेहे, मन तने अपना तिन जन देहे। जिन जने अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्व थोक का दाता। तिसकी शरण सर्व सुख पावे, तिसके दर सब पाप मिटावे। अवर सियानब सगली छाड़, तिस जन की तू सेवा लाग। आवन जान हो भी तेरा, नानक तिस जन के पूजो सद पैरा। श्लोक सतपुरख जिन जानिया, सतगुरु तिसका नाओ। तिसके संग सिख उदरै, नानक हर गुण गाओ अष्टपदी। सतगुर सिक्की करै प्रतपाल, सेवक कौ गुर सदा दयाल। सिक्के गुर दुरमत मल हिरै, गुर बचनी हर नाम उचरै। सतगुर सिक्के बंधन काटै, गुर का सिख विकार ते हटै। सतगुर सिक्को नाम धन दे, गुर का सिख वड भागी हे। सतगुर सिक्का हलत फल सवार, नानक सतगुर सिक्को जी नाल संभार। गुर कै ग्रह सेवक जो रह, गुर की आज्ञा मन में सह। आपस को कर कछ न जनावै, हर हर नाम हृदय सत्यावै। मन विचै सतगुर कै पा, तिस सेवक के कार्य रा। सेवा करत हुए नेकामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी। अपनी कृपा जिसे आप करे, नानक सो सेवक गुर की मत ले। बीस बिस्वे गुर का मन माने, सो सेवक परमेश्वर की गत जाने। सो सतगुर हृदय हर नाओ, निक बार गुर को बल जाओ। सर्व निदान जी का दाता, आठ पहर पार ब्रह्म रंग रता। ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म, एक है आप नहीं कछ परम। सह सियान पुलया ना जाइए, नानक ऐसा गुर बड़ भागी पाइए। सफल दर्शन पेखत पुनीत, परसत चरण गत निर्मल रीत। भेटत संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगह गवे। सुनकर बचन करन आघाने, मन संतोख आत्म पतियाने। पूरा गुर अख्यो जाका मंत्र, अमृत दृष्ट वेखै हुए संत। गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस पावै तिस लय मिलाए। जे पाए कुछ तत् अनेक, सतपुरख पूर्ण भवे। काहू बोल न पहुंचत प्राणी, अगम गोचर प्रभ निर्वाणी। निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकि कीमत किन्हें न पाई। अनिक भगत बंधन नित करहै, चरण कमल हृदय सिमरै। सत बलिहारी सत गुरे अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने। इव हरस पावै जन कोए, अमृत पीवे अमर सो होए। उस पुरख का नाही कदे विनाश, जा कै मन प्रगटे गुणता। सो आठ पैर हर का नाम ले, सच उपदेश सेवक कौ दे। मोह माया कै संग न ले, मन में राखै हर हर एक। अंधकार दीपक प्रगासे, नानक परमो दुख तहते नासे। तब तुम्हारे ठाठ वरताई, अनंत भया दुख नाठे पाई। जन मरण के मिटे अंदेशे, साधु के पूर्ण उपदेशे। पौ चुका निर्भौ हुए बसे, सगल ब्याध मंते खै नसे। जिसका साथिन कृपा तारी, साध संग जप नाम मरारी। थित पाई चुके प्रभ गवन, सुन नानक हर हर जस श्रवन।
निर्गुणाप सरगुण पियो ही कला धार जिन सगली मोही अपने चरित प्रभाव बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिंदु जाना ही कोई सर्व निरंतर एको सोई ओत पोत रव्या रूप रंग भय प्रगा साध कै संग रच रचनाए अपनी कल धारी अनकवार नानक बलिहारी सलोक साथ न चाले बिन भजन बिखिया सगली चार हर हर नाम कमावना नानक के तन सार अष्टपदी संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार और पाप संबीत विसारो चरण कमल हृदय उतारो करण कारण सो प्रभ समर्थ दृढ़ कर गहो नाम हर वाते तन संचो हो वो भगवंत संत जना का निर्मल मंति का सुरखु मनवाए सर्व रोग नानक मिट जाए जिस तन को चार कुंट उठतावे सो तन हर सेवा ते पावे जिस सुख को नित बाचे मीत सो सुख साधु संग प्रीत जिस शोभा कहो करह भली करनी सा शोभा भज हर की सरनी अनिक पावी रूप न जाय रूप मिटे हर अवकद लाय सर्व निदान मैं हर नाम निदान जब नानक घर गए परवान मन प्रबोधो हर कह नाय ताज स्थावत आवे ठाई ताको विघ्न न लागे कोई जाके हृदय बसे हर सोए कल ताती ठंडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ पहु विनसै पूर्ण होया भगत पाए या तुम प्रगास तित कर जाए बसै अविनाशी कौ नानक काटी चंपासी तत विचार कह जन साचा जन मरै सो काचो काचा आवागमन मिटै प्रसीव आप त्याग शरण गुरुदेव रत्न जन्म का हुए उधार हर हर सिमर प्राण आधार अनिक उपावना छूटन हारी सिमरत शास्त्र वेद विचारे हर की भगत करो मन लाए मन वंचित नानक फल पाए संग न चालस तेरे तना तू क्या लपटावे मूर्ख मना सुत मीत कुटंबर बनता इंते कहो तुम कवन सनाथा राज रंग माया विस्तार इंते कहो कवन छुटकार असस्तीरथ सुवारी झूठा डम झूठ पासारी जिन दिए तिस बुझे न बिगाना नाम विसा नानक पछताना गुर की मत तू ले आने भगत बिना बडू बेस्याने हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो ची चरण कमल राखो मन वाहे जन्म जन्म के किल विक जाहे आप जपो अबरा नाम जपावो सुनत कैत रहत गत पावो सार पू सत हर को नाओ सह सुभाए नानक गुण गाओ गुण गाव तेरी त्रस मैल बिन सुजाए हम मैं बिक फैल हुए चिंत बसै सुख नाल सास बरा सर नाम संभाल चाड़ सियान सगली मना साध संग पावे सच तन्हा हर पूंजी संच करो व्यवहार यहाँ सुख दर गए जयकार सर निरंतर एको देख कौ नानक जाके मस्तक लेख एको जाप एको साला एक सिमर एको मन आहे कसके गुण गाओ अनंत मंथन जाप एक भगवंत एको एक एक हरे आप पूर्ण पूर रहो प्रव्यापन विस्तार एक ते पय एक अराज प्राचित गये मंथन अंतर एक प्रव्रता गुर प्रसाद नानक के जाता श्लोक फिरत फिरत प्रभ आया प्रया तो शरणाय नानक की प्रभिंती अपनी भक्ति लाए अष्टपदि जाचक जन जाचे प्रदान कर कृपा देव हर नाम साजना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर सदा सदा प्रभ के गुण गाहूं सास सास प्रभ तुम्हें त्या हूं चरण कमल सोला कै प्रीत भगत करूं प्रभ की नित नीत एको टेको आधार नानक मांगे नाम प्रसार प्रभ की दृष्टि मां सुख होए हर रस पावे बिरला कोए जिन चाख्या से जन तृप्ताने पूरन पुरख नहीं डोलाने सुपार परे प्रेम रस रंग उपजे चाव साध कै संग परे शरणान सब त्याग अंतर प्रगासन दिन लिवलाग विटभागी जपिया प्रभ सोए नानक नाम रत्ते सुख होए सेवकी मनसा पूरी पई सतगुरु ते निर्मल मत लई जन को प्रभ होयो दयालु सेव किनु सदा निहाल बंधन काट मुख जन भया जन मरण दुख भ्रम गया अचपनी श्रद्धा सपूरी रव रहा सत्संग हजूरी जिसका साथ लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाये सो क्यों बिसरै जे काल न पाने सो क्यों बिसरै जे की आ जाने सो क्यों बिसरै जिन सब किश दिया सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया सो क्यों बिसरै जे अगन मै राखै गुर प्रसाद को बिरला लाखै सो क्यों बिसरै जे बिकते कट है जन्म जन्म का टूटा गट है गुर पूरे तत है बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया साजन संत करो एह कामा त्याग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अवरै नाम जपावो भगत पाए तरी है संसार
बिन भक्ति तन होसी चार सर्व कल्याण सुख नित नाम बूढ़ जात पाए विश्राम सगल दुखा होत नासु नानक नाम जपो गुणता सूप जी प्रीत प्रेम रचाओ मन तने अंतर ही सुहाओ नेत्रोपेख दर सुख हुए मन विकसै सा चरण तोए भग जना कै मंत्र रंग बिरला को पावे संग एक वस्त दीजै करमया गुर प्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा कही न जाए नानक रहया सर्व समाए प्रभु संत दीन दयाल भगत वचल सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा कर प्रतपाल आदि गुरु कारण करतार भगत जना के प्राण आधार जो जो जपै सो हुए पुनीत भगत पाए लावै मन हीत हम निर्गुण यार नीच जान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान सर्व वैकुंठ मुक्त मुख पाए निम करके गुण गाए अनेक राज भोग बढ़े आई हर के नाम की कथा मन पाई व भोजन का फिर संगीत रसना जपती हर हर नीत भली सो करनी शोभा तनवंत हृदय बसे पूर्ण गुरमंत सा संग प्रभ देहो निवास सर्व सुख नानक प्रगास लोक सर्व

ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨਾ ਆਵੈ ਤੋਟ ਕਥ ਕਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹੋ ਨਾਨਕ ਵਿਗਸੈ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹੋ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ ਆਖ ਹੈ ਮੰਗਾ ਹੈ ਦੇਹ ਦੇਹ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ ਫੇਰ ਕੇ ਅਗੈ ਰੱਖੀਐ ਜਿਤ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ ਮੋਹੋਂ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਐ ਜਿਤ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕੱਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੂਖ ਦੁਆਰ ਨਾਨਕ ਏ ਵੈ ਜਾਣੀਐ ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਉ ਦੁਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਘਰ ਲੈ ਜਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ਗੁਰ ਈਸਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ ਜੇ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨ ਜਾਈ ਗੁਰਾ ਇਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾ ਵਿਣ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਾਏ ਕਰੀ ਜੇਤੀ ਸਿਰਠ ਉਪਾਈ ਵੇਖਾ ਵਿਣ ਕਰਮਾ ਕੇ ਮਿਲੈ ਲਈ ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਐ ਨਾਲ ਚੱਲੈ ਸਭ ਕੋਏ ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਏ ਕਹਿ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਾਗਲੇ ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵਈ ਤਾਂ ਵਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਕਿ ਕੀਟਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸੀ ਦੋਸ ਧਰੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ ਤੇਹਾ ਕੋਏ ਨਾ ਸੁਜਈ ਜੇ ਤਿਸ ਗੁਣ ਕੋਏ ਕਰੇ ਸੁਣੈ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ ਸੁਣੈ ਧਰਤ ਧਵਲ ਆਕਾਸ਼ ਸੁਣੈ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ ਸੁਣੈ ਪੋਹੇ ਨਾ ਸਕੈ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣੈ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ਼ ਸੁਣੈ ਈਸਰ ਬਰਮਾ ਇੰਦ ਸੁਣੈ ਮੁਖ ਸਾਲਾ ਹਨੁਮੰਦ ਸੁਣੈ ਜੁਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ ਸੁਣੈ ਸਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣੈ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ਼ ਸੁਣੈ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ ਸੁਣੈ ਅੱਠ ਸੱਠ ਕਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੁਣੈ ਪੜ ਪੜ ਪਾਵੈ ਮਾਨ ਸੁਣੈ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣੈ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ਼ ਸੁਣੈ ਸਾਰਾ ਗੁਣਾ ਕੀ ਗਾਹ ਸੁਣੈ ਸੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤ ਸਾਹ ਸੁਣੈ ਅੰਧੇ ਪਾਵੈ ਰਾਹੋ ਸੁਣੈ ਹਾਥ ਹੋਵੈ ਅਸਗਾਹੋ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣੈ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ਼ ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿਛੈ ਪਛੁਤਾਏ ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਨਾ ਲਿਖਣ ਹਾਰ ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਾਨ ਕੋਏ ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੈ ਮਨ ਬੁੱਧ ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੀ ਸੁਧ ਮੰਨੈ ਮੋਹੇ ਚੋਟਾ ਨਾ ਖਾਏ ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਏ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਏ ਮੰਨੈ ਪਥ ਸਿਉ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ ਮੰਨੈ ਮਗ ਨਾ ਚਲੈ ਪੰਥ ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸੰਬੰਧ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ ਮੰਨੈ ਪਾਵਹਿ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰ
मनै तरै तारी गुर सिख मनै नानक भवह ना भिख ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए पंच प्रवान पंच प्रधान पंच पाव है दर्ग है मान पंचै सोहे दर राजान पंचा का गुर एक त्यान जे को कह करै विचार करते कह करणै नाही सुमार तौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जिन सूत जे को बुझै होवै सचियार तवलै उपर किता पार धरती होर परै होर होर तिस्ते पार तलै कवन जोर जी जात रंगा के नाव सबना लिखिया वुड़ी कलाम एहो लेखा लिख जाने कोए लिखा लिखिया किता होए किता तान सवाले हो रूप केती दात जाने कौन कूत कीता फसाओ एको कवाओ तिस ते होए लख दरियाओ कुदरत कवन कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावै साई पलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख न जप असंख पाओ असंख पूजा असंख तप ताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन राहे हे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पाख सार असंख मोन लिव लाए तार कुदरत कवन कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावै साई पलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूरख अंध घोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गाल वड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे असंख मलेश मल पाखो खाहे असंख निंदक सिर कर है पार नानक नीच कह विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावै साई पलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख काहे हे सिर पार होए अखरी नाम अखरी सालाह अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखन बोलन बाण अखरा सिर संजोग वखाण जिन ए लिखे तिस सिर नाहे जेव फुरमाए तेव तेव पाहे जेता कीता तेता नाओ विण नावै नाही को थाओ कुदरत कवन कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावै साई पलीकार तू सदा सलामत निरंकार भरियै हाथ पैर तन देह पानी धोता है उतर सोखे मूत पलीती कपड़ होए दे साबून लइयै ओ धोए भरियै मत पापा कै संग ओह धोपै नावै कै रंग पुनी पापी आखण नाहे कर कर करना लिख लै जाहो आपे बीज आपे ही खाहो नानक हुक्मी आवहो जाहो तीरथ तप दया दत दान जे को पावै तिलका मान सुनया मनया मन कीता पाओ अंतरगत तीरथ मल नहाओ सब गुण तेरे मैं नाही पोए विण गुण कीते भगत ना होए स्वस्थ आथ बाणी ब्रह्माओ सत सुहाण सदा मन चाओ कवन सो वेला वक्त कवन कवन थेत कवन वार कवन से रुति माह कवन जित हुआ आकार वेल ना पाया पंडती जे होवै लेख पुराण वक्त न पायो का दिया जे लेखन लेख कुराण थित वार न जोगी जाने रुत माह न कोई जा करता सिर ठीक कौ साजे आपे जाने सोई
किव कर आखा किव सालाही क्यों वरनी किव जाना। नानक आखण सब को आखै एक दू एक सियाणा। वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता जाका होवै नानक जे को आपौ जाणै अगै गया ना सो है। पाताला पाताल लख आगासा आगास ओड़क ओड़क पाल थके वेद कहन एक वात। सहस अठारह कहन कतेबा असलो एक तात। लिखा होए ता लिखी है लिखै होए विनास नानक वड्डा आखी है आपे जाने आप। सालाही सालाही एती सुरत ना पाईया नदियां अतै वाह पवै समुंद ना जानी है। समुंद साह सुल्तान गिरहा सेती माल तन कीड़ी तुल न होवनी जेत सम्मन होना विसरा है। अंत ना सिफती कहन ना अंत अंत ना करण देन ना अंत अंत ना वेखण सुनन ना अंत अंत ना जापै क्या मन मंत। अंत ना जापै कीता आकार अंत ना जापै पारावार अंत कारण केते बिल लाहे ताके अंत ना पाए जाहे। एहो अंत न जाने कोए बहुता कहिए बहुता होए। वड्डा साहिब ऊंचा थाओ ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ। ए वड ऊंचा होवे कोए तिस ऊंचे कहो जाने सोए। जे वड आप जाने आप आप नानक नदरी करमी दात। बहुता कर्म लिखिया ना जाए वड्डा दाता तिल ना तमाए। केते मंग है जोद अपार केते अगणत नहीं विचार केते खप तुट है वेकार। केते लै लै मुकर पाहे केते मूर्ख खाही खाहे केतिया दुख पूख सद मार। ए पे दात तेरी दातार बंद खलासी पाने होए होर आख ना सकै कोए। जे को खाए को आखण पाए ओह जाने जीतिया मोहे खाए। आपे जाने आपे दे आखै से भेके के जिसनो बख्से सिफत सला नानक पात साही पात साहो। अमुल गुण अमुल व्यापार अमुल व्यापारीए अमुल भंडार। अमुल आवै है अमुल लै जाहे अमुल पाए अमुला समाहे। अमुल धर्म अमुल दीवान अमुल तुल अमुल परवान। अमुल बख्शीस अमुल निशान अमुल कर्म अमुल फुरमान। अमुलो अमुल आखिया न जाए आख आख रहे लिवलाए। आख है वेद पाठ पुराण आख है पढ़े करह वख्याण। आख है बरमे आख है इंद आख है गोपी तय गोविंद। आख है ईसर आख है सिद्ध आख है केते कीते बुद्ध। आख है दानव आख है देव आख है सुर नर मुन जन सेव। केते आख है आखण पाहे केते कह कह उठ उठ जाहे। एते कीते होर करे ही ता आख ना सक है केई के। जे वड पावै ते वड होए नानक जाने साचा सोए। जे को आखै बोल विगाड़ ता लिखी है सिर गावारा गवार। सो दर कीहा सो कर कीहा जित बह सर्ब समाले। वाजे नाद अनेक असंखा केते वावण हारे। केते राग परिस्यों कहियन केते गावण हारे। गावै तुहनो पाउण पाणी बैसंत्र गावै राजा धर्म दुआरी। गावै चित गुप्त लिख जाणै लिख लिख धर्म विचारी। गावै ईसर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारी। गावै इंद इंदा सुन बैठे देवतियां दर नाले। गावै सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारी। गावन जति सती संतोखी गावै वीर करारे। गावन पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले। गावै मोहनिया मन मोहन सुरगा मश पयाले। गावन रतन उपाय तेरे आठ साठ तीरथ नाले। गावै जोध महाबल सूरा गावै खाणी चारी। गावै खंड मंडल वर पंडा कर कर रखे तहारी।
सेई तुदनो गावे जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चित न आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है पी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिन सी माया जिन उपाई कर कर वेखै कीता अपना जिव तिस दी वड्याई जो तिस भावै सोई कर सी हुक्म ना करना जाई सुपात साहो साहा पात साहेब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख सरम पत झोली ध्यान की करै बेभूत खिंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीतै जग जीत आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजह नाद आप नाथ नाथी सब जा की रिद सिद अवरा साध संजोग विजोग दोए कार चला वह लिखे आवह भाग आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस एका माई जुगत व्याई तिन चेले प्रवान एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीबाण जिव तिस भावै तिवै चलावै जिव होवै फुरमान हो वेखै उना नदर ना आवै बहुता एहो वेडाण आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस आसन लोए लोए भंडार जो किश पाया सो एका वार कर कर वेखै सिरजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस एक दूजी बौ लख हो हे लख हो वै लख वीस लख लख गेड़ा आखिया एक नाम जगदीस ए तरा हे पत पवड़िया चढ़िया होए इकीस सुन गलां आकाश की कीता आई रीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़े ठीस आखण जोर चुपै नह जोर जोर ना मंगण देन ना जोर जोर ना जीवन मरण नह जोर जोर ना राज माल मन सोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती थिती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथै सोहन पंच प्रवान नदरी करम पवै निसान कच पकाई उथै पाए नानक गया जापै जाए धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का आखा हो करम केते पवन पाणी वै संत्र केते कान महेश केते बर में घाड़त घड़िया है रूप रंग के वेस केतिया करम भूमि मेर केते केते तू उपदेश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेस केते देव दानव मुन केते केते रतन समुंद केतिया खाणी केतिया बाणी केते पात निरिंद केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत ना अंत ज्ञान खंड मैं ज्ञान प्रचंड तिथै नाद विनोद कोड आनंद सरम खंड की बाणी रूप तिथै घाड़त घड़िया बहुत अनूप ताकियां गल्लां कथियां न जाहे
जे को कहे पिछै पछुताए। तिथै घड़ियै सुरत मत मन बुद्ध, तिथै घड़ियै सुरां सिद्धां की सुध। कर्म खंड की बाणी जोर, तिथै होर ना कोई होर। तिथै जोद महाबल सूर, तिन में राम रहया भरपूर। तिथै सीतो सीता महिमा माहे, ताके रूप ना कथने जाहे। ना ओहे मरहै ना ठाके जाहे, जिन कै राम वसै मन माहे। तिथै भगत वसै केलो, करै आनंद सच्चा मन सोए। सच खंड वसै निरंकार, कर कर वेखै नदर निहाल। तिथै खंड मंडल वर पंड, जे को कथै ता अंत ना अंत। तिथै लो लो आकार, जीव जीव हुकम तिवै तिवकार। वेखै विग सै कर विचार, नानक कथना करड़ा सार। जत पहारा धीरज सुनियार, आहरण मत वेद हथियार। पाओ खाला अग्न तप ताओ, भांडा पाओ अमृत तित ढाल। घड़ियै शब्द सची टकसाल, जिन कौ नदर कर्म तिनकार। नानक नदरी नदर निहाल। सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत, दिवस रात दोए दाई दाया खेलै सगल जगत। चंगे आईया बुरे आईया, वाचै धर्म हदूर, करमी आपो अपनी।

मूरत अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव भेव न जानही जेह बेद और कतेब रूप रंग न जात पात सो जानही केह जेब तात मात न जात जाकर जन्म मरण बिहीन चक्र बकर फिर चतुर चक मानई पुरतीन लोक चाउ दह के बिख जग जाप ही जिह जाप आद देव अनाद मूरत थाप्यो सबै जिह थाप परम रूप पुनीत मूरत पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्व रचियो सुयंभव गणन पंजन हार कालहीन कला संयुगत अकाल पुरख अदेश धर्म ताम सो परम रहत अपूत अलख अपेस अंग राग न रंग जाक है जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीक अन उस तत एक पुरख अवतूत गर्भ गंजन सर्व पंजन आद रूप असूत अंगहीन अपंग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रत पार सर्वगंता सर्वहंता सर्वते अनपेख सर्वशास्त्र न जानही जेह रूप रंग अर रेख परम वेद पुराण जाकह नेत पाखत नित कूट सिमरत पुराण शास्त्र न आवही वह चित मधुभार छंद त्व प्रसाद गुणगन उदार महिमा अपार आसन अपहंग उपमा अनंग अनुपहु प्रकाश निस दिन अनास आजान बाहो शाहान शाह राजान राज पहनान पहान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनुपूत अंग आपा अपंग गतमित अपार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निरपय निकाम अद्दुत प्रचंड मित गत अखंड आलस्य कर्म अदृश्य धर्म सर्वा प्रणाड्य अंडन बाड्य चाचरी छंद त्वा प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निरनामे अकामे भुजंग प्रयात छंद चतरचक्र करता चतरचक्र हरता चतरचक्र दाने चतरचक्र जाने चतरचक्र वर्ती चतरचक्र परती चतरचक्र पाले चतरचक्र काले चतरचक्र पासे चतरचक्र वासे चतरचक्र माने चतरचक्र दाने चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परमं न पित्र न कर्मं न काय अजन्मं अजाय न चित्र न मित्र परे हैं पवित्र प्रथिश अदिश अदृश्य अकृश्य भगवती छंद त्वा प्रसाद कथते के अशिज देश है के अभिज पेश है के अगंज कर्म है के अपंज परम है के अभिज लोक है के अदित सोक है के अवतूत वर्ण है के बेपूत करण है के राजंग प्रभा है के तरमंग तुजा है के आशोक वर्ण है के सर्वा अवर्ण है के जागतंग कृति है के शत्रंग क्षत्रि है के ब्रह्मंग स्वरूपे के अनपाओ अनुप है के आद अदेव है के आप अपेव है के चित्रंग बहीने के एक अधीन है के रोजी रजा कह रही मेरे हाक है के पाक बेअब है के गैबुल गैब है के आप गुल गुना है के शाहान शाह है के कारण कुनिंद है के रोजी देहांत है के राजक रहीम है के कर्मं करीम है के सर्वं कली है के सर्वं दली है के सर्वत्र माने है के सर्वत्र दाने है के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पौन है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र साज है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मान्य है सदैवं प्रधान्य है के सर्वत्र जाप्य है के सर्वत्र थाप्य है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वं कली में के परमं फही में के आकल अलम है के साहिब कलम है के हुसनल वजू है तमामल रजू है हमेशुल सलाम है सलीखत मुदाम है गनीमल सिकस्त है गरीबुल परसत है बिलंदुल मकान है जमीनल जमान है तमीजुल तमाम है रजूअल निधान है हरी

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासा होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नाओ सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है जिस जठै सब दुख जाए। पेग बहादुर सिमरै घर नाउ निध आवै ताए। सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज सब थाई होवो जी सहाय। दसाही पातशाहियां दी जागदी ज्योत बाणी के बो हेत। चवर ताकत शत्र दे

दुख बिन से सुख की न ठाऊ, जप जप अमृत नाम अघाय, संत प्रसाद सगल फल पाए, राम जपत जन पार परे, जन्म जन्म के पाप हरे रहाउ। गुर के चरण हृदय उरतारे, अगन सागर ते उतरे पारे,

जाला, ना इस दुख नहीं जम जाला, ना इहु बिनसै ना इहु जाए, आद जुगादी रहया सुमाए, ना

पचाए। निंदक कै मुख कीनो रोग, जय जयकार करे सब लोग। संतन कै मन महा आनंद, संत जप है गुरु।

कुंड, आकाश गगन पाताल गगन है, चौदिश गगन रहायले, आनद मूल सदा पुरखोत्तम।

सोहागन है अत सुंदरी, पग नेवर छनक छन हरी, जो लग प्राण तो लग संगे, नाही ता चली बेग उठ नंगे। सोहागन प्रवण सोहागन पवन त्रै लिया, दस अठ प्राण तीर्थ रस किया, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर विदे

वे फूटे, कहो कबीर गुर कृपा छूटे गौंड। जैसे मंदिर में बलहर ना ठहरे, नाम बिना कैसे पार उतरे, कुंभ बिना जल ना टीकावे, साधु बिन ऐसे अभिगत जावे रा। जारू तिसे जो राम न चेते, तन मन रमत रह मह खेते रहाओ। जैसे हलहर बिना जिमी नहीं बोई है, सूत बिना कैसे मणि परोई है,

पांच पलीतह कौ प्रभु है, नौ नायक की भगत पहचाने, सो बाजारी हम गुरमाने, तस्कर सोए जे तात न करे, इंद्री कै जतन ना मुचरे, कहो कबीर हमें ऐसे लखन, धन गुरुदेव अतरूप बिचखण।

हीरे पसुआरा, सोना गढ़ते हीरे सुनियारा, सोना गढ़ते हीरे सुनारा, ज्यों बिखई हीरे परनारी, कौडा डारत हीरे जुआरी, जह जह देखो तह तेरा मां, हर के चरण

ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार, श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं, प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याई, फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरौ, श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है, जिस डिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरै कर नौ निधावै ताई, सब थाई हुए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी, सब थाई हुए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरु। पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हटियां जपियां तपियां, जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई, तेग वाही देख के अंडिट कीता, तिन्हां प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु। जिन्हां सिंघां सिंघणियां धर्म हेत शीस दिते, बंद बंद कटवाए खोपरियां लुहाइयां चरकड़ियां ते चढ़े आरियां, नाल चराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया सिखी केसां स्वासां नाल निभाई, तिन्हां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरु। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चित आवे चित आवन का सदका, सर्व सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहिब, तहां तहां रचिया रियायत, देव तेग पते बिरध की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहिगुरु। सिखां नूं सिखी दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, विसाहु दान, भरोसा दान, दाना सिर दान, नाम दान। श्री अमृत सर साहिब जी के दर्शन इसनान, चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल, धर्म का जयकार बोलो जी वाहिगुरु। सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत पत दे राखे आप वाहिगुरु, हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सहाई, दातार जियो श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरुद्वारे गुरुधाम, जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार, सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शिश करो। हे निमाणियां दे मान सतगुरु, नितानियां दे तान गुरु गरीब नवाज, धन धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी, आप जी का फरमान है लख खुशियां पात साहियां, जे सतगुरु नदर करे निमक एक हर नाम दे, मेरा मन तन शीतल होए दे मां बाकां साथ। गरीब नवाज आप जी ने कृपा कीती है, आप जी के हजूर सुभाग जोड़ी जोसफ अनिल प्रसाद पुत्र राज प्रसाद, बीबी परमजीत कौर प्रसाद अते बच्ची मारदरी हुआन गोहचलीन सुपुत्री जौल गोहचलीन, बीबी एमरलीन गोहचलीन, इस सुभाग जोड़ी दे आप जी के हजूर आनंद कारज होए हन। सतगुरु जी आनंद कारज की मर्यादा निभाउंदियां आप जी के सेवादारा पासों बेअंत बेअंत भुलां होईयां खिमा कर देनी अगे तो, सेवा दे योग आप सिर ते मेहर भरिया हथ रख के बना लेना। सतगुरु जी सुभाग जोड़ी दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखना, ग्रिश धर्म दियां खुशियां खेड़े झोली विच पाउणा, अपने दर घर दी प्रीत और प्रतीत बख्शिश करके नवाजना, दोहां परिवारां दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखना, आपसी प्रेम प्यार दी दात भावना दी दात बख्शिश करके नवाजना। सतगुरु जी इस वक्त आप जी ने सुंदर पोशाके अर्पण किए गए हैं, आप जी ने अंगीकार करने सदीव काल सेवकां दे पड़दे कजने, बख्शिश किए भंडारियां चुकड़ा प्रसादी देग हाजिर है, आप जी के दर प्रवान होवे जी, प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरताउण दी आग्या होवे। गरीब नवाज बेअंत संगतां ने हाजरियां भरियां तिल फुल भेटा माया, आप जी के चरणा विच भेट कीती, समूह संगत दियां हाजरियां माया दर ते प्रवान करनी, सभनां दरों घरों चढ़ दियां कला बख्शिश करके नवाजना, सभनां दियां अरदासां बेनतियां दर ते प्रवान करनी, अपने चरणा दी प्रीत बख्शिश करके नवाजना। गरीब नवाज कृपा करो, पावन पवित्र हुक्म बख्शो जी, हुक्म ते चलण दी मत बुद्ध प्रदान करो, अखरवाद घाट भुल चुक माफ करनी, सरबत दे कारज रास करने, सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहेवंद होवन, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणी सरबत दा भला। वाहिगुरु।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ।

भक्ति और शोभती जल जोगंती बहुपात सतगुर मेरा सदा दयाल मोहे दिन को रख लिया काटिया रोग महासुख पाया हर अमृत मुख नाम दिया मन मेरी गहो हर नाम का ओला तुझे मा लागे ताता चला ए सब अब जिन्हें शरण की तिरंत जिन्हों की विचार दर्शारण की पाई उस मालप्रभु के नाल जुड़िया रहे जिस मालप्रभु की कृपा सबका सदा रहे निर्मल सी काया काल ना कहूं व्याप है उस मालप्रभु के चन्ना नाल जुड़े रहिए ताकि साडा जीवन सुख के नाल वर्तित होए सो इनिक सेवा प्रवान करनी हुई अपना चुका दिखी मैं आओ अगले प्रोग्राम सरुण करी सत्कारियो ज्ञानी वरिंद्र पाल सिंह जी उन्हां पासो अज दे जिहड़े हम चल रही गुरबाणी दी विचार ओ सरुण करी गुरु इतिहासिक इतिहास सरुण करी दासल फतेह प्रवान करो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

यार प्रभा जियो सतगुर पाणे आपने मैं परिवार सदाया मत मैं पिछे कोई रोस रोव सी सो मैं मूल ना पाया मित पैजै मित बिकसै जिस मित की पैज भावे तुसी विचार देखो पुत पाई हर सतगुरु पहनावे सतगुरु प्रतक होंदे मैं राज आप टिकाया साहब सिख बंदा पुत भाई रामदास पैरी पाया अंत सतगुरु बोलिया मैं पिछे कीर्तन करियो निर्वाण जियो केशो गोपाल पंडित सदियो हर हर कथा पढ़े पुराण जी और कथा पढ़ी हर नाम सुनिए बेबाण हर रंगुर भावे पिन पत्तल क्रिया दिव्या फुल हर सर पावे हर पाया सतगुरु बोलिया हर मिलिया प्रुख सुजान जी रामदास सोडी तिलक दिया गुर सब सच निशान जी सतगुरु प्रुख जे बोलिया गुर सिक्खा मन लई रजाय जियो मोरी पुत सन्मुख होया रामदास पैरी पाए जियो सब पवे पैरी सतगुरु केरी जिथे गुरु आप रखिया कोई कर बिखिली नी वह नाई।

एक संग पंच बरंगन संग अलाप है आठो नंदन प्रथम राग भैरो वै कर ही पंच रागनी संग उचर ही प्रथम पैर भी बिलावली पुनिया की गा वह बंगली पुनसले की।